यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यथा, तरी मक्खन के समान वाणी और निर्दय चित्त करके शत्रु को इस प्रकार समझावे जिससे वंश सहित शत्रु मर जाए। कथाम अवगतवन्तः किम्? इदानीं गीता श्लोक पठनम्। अद्य भगवद गीतायाः तृतीयस्य अध्यायस्य श्लोकः श्लोक संख्या 11 तः 20 पर्यन्तम्। श्लोक संख्या 11 to 20।

0: भक्तिमय सकाळमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आहे. केलिवण धोनी 90.4 FM वरती तुम्ही ठेवलेली आहात आणि आता आपण आध्यात्मिक विचार ऐकू.
1: शुद्धता का महत. आजकल हर चीज में मिलावट ही मिलावट है. दूध में पानी, असली घी में डालडा, मिर्ची में लाल मिट्टी, काली मिर्च में पपीते के बीज. इतना ही नहीं, नकली सिंथेटिक दूध और दालें धड़ल्ले से बाजार में बिक रही है. शुद्ध चीजें मिलना तो नामुमकिन और मुश्किल हो गया है मुश्किल. लेकिन भाई, शुद्धता के बिना जीवन का असली मजा कहाँ? शुद्धता तो वो महान गुण है जो मनुष्य को सुंदर, स्वस्थ और सुखी तो बनाता ही है, साथ में मानव व चीज वस्तु व पदार्थ को अनमोल भी बनाता है. शुद्धता अर्थात वस्तु या पदार्थ में किसी भी प्रकार की मिलावट न होना, व्यक्ति के आचरण में अंश मात्र भी विकारों की मात्रा न होना, आत्मा व चीज वस्तु पदार्थ का मूल शुद्ध स्वरूप में स्थित होना भी शुद्धता है. शुद्धता नकारात्मक विचार त्याग कर केवल कल्याणकारी, लाभप्रद, श्रेष्ठ और शुभ चिंतन करना मानसिक शुद्धता होती है. उसकी भेंट में आप शब्दों और निंदाजनक गाली गलोच, गलिच्छ शब्दों का प्रयोग न करना वाणी की शुद्धता है. पदार्थ के मूल घटकों को योग्य प्रमाण में स्थिर बनाए रखना पदार्थों की शुद्धता है. स्नान आदि से शरीर को स्वच्छ रखना शारीरिक शुद्धता है और इसका महत्व सर्वोपरि और सर्वव्यापी है. किसी भी ध्येय या उद्देश्य की परिपूर्णता के लिए इसकी सख्त जरूरत होती है. जैसे सीमेंट में राख की मिलावट से भवन कमजोर बन जाता है, भोजन में अशुद्ध सामग्री से बीमारियां पैदा होती है और स्वास्थ्य को बड़ा खतरा होता है. लेकिन तन, मन व आहार की शुद्धि से ही आरोग्य लाभ भी होता है. सोने में दूसरे धातु मिलने से उसका मोल घट जाता है. शुद्धता आयु बढ़ाती है और मूल्य यानी कीमत में वृद्धि भी करती है. प्राकृतिक तत्वों की अशुद्धि प्रदूषण को जन्म देती है और शुद्धता प्रदूषण का नाश करती है. आचरण में लोभ, मोह और अहम की अशुद्धि भ्रष्टाचार बढ़ाती है, जिससे संसार तो नरक जैसा बन जाता है. देवी गुण युक्त शुद्ध आचरण यानी श्रेष्ठाचार से ही स्वर्ग साकार होता है. अतः शुद्धता को अपनाइए और जीवन को अनमोल बनाइए. ऐसी हमारी आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं.

0: वेणु धोनी 90.4 एफएम केएलई गणसू पे आप ट्यून है और अभी हम सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज।
1: वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर भी चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं।
3: रास लफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
1: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
3: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
1: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
3: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 285,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
1: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन हॉर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा की गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया। भारत ने भी अमेरिका के कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं। रिशु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। एक रिपोर्ट।
5: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी देशों की घरेलू जरूरतें अलग अलग होती हैं और लगातार बने रहने वाले वैश्विक असंतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर मुख्य रूप से घरेलू मांग के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और मध्यम अवधि में इसके सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, केन्या, दक्षिण कोरिया जैसे G7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मानसून के कमजोर रहने की आशंका है।
6: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे, क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले, मतलब जहां 25-50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं, ऐसे 76 जिले हैं। और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले, इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
1: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटर्स के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
7: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और होर्मुज़ को पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहे 11 ईंधन वाहक जहाजों की खबरें सबसे ऊपर छाई हैं। दैनिक भास्कर ने CUET परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाने वाली देवीना गहलोत का चित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, 100% वाले 20% बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। नवभारत टाइम्स ने परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के चित्र के साथ इस समाचार को शीर्षक दिया है, दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले में CUET के बाद भी 100% की रेस। देशबंधु ने मौसम के मिजाज को पहले पन्ने पर जगह दी है, खबर को शीर्षक दिया है, दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट और 12 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून। जबकि दैनिक भास्कर का कहना है, मानसून 3 दिन देरी से मुंबई पहुंचा। पत्र ने दिल्ली NCR में अभी हफ्ते भर और गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने संकट के बीच शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। पत्र की राय में मौजूदा संकट के लिए भले ही वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हो, लेकिन इसके समाधान के लिए कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं राजस्थान पत्रिका ने कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को प्रमुखता से प्रकाशित किया है, वैज्ञानिकों की 7 साल की मेहनत रंग लाई, सुपरफूड ग्रेन ओट्स में भारत बन रहा आत्मनिर्भर।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: वेणुध्वनि के LE कंसू पे आप ट्यून है और अब तक हम सुन रहे थे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज। आप सुनते रहे वेणुध्वनि 90.4 FM के LE कंसू।
8: KLE Pharmacy College Umbalgavi 2026 27ರ ಪ್ರವೇಶಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ ಬಸವನಕುರ್ಚಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯವುಳ್ಳ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ. ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಬಿಫಾರ್ಮ್, ಫಾರ್ಮ್ಡಿ, ಎಂಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು PhD ಸೇರಿದಂತೆ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ. ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆಗಳು, 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಅನುಭವ, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 3,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಲಿಷ್ಠ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಚಿತ್ತೋಕ್ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾದ ಹೊಸ ಆವರಣ ಔಟ್ಕಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫಲಿತಾಂಶ ಆಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಬೇತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಆಧುನಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ನ್ಯಾಕ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಐಆರ್ಎಫ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 08312471399 ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9740639702 ವೆಬ್ಸೈಟ್ www.kleefarm.edu
0: आरोग्य हीच खरी संपत्ती आपल्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी आता विश्वासाचं नाव केले अकॅडमी ऑफ हायर एज्युकेशन अँड रिसर्च अंतर्गत केली होमिओपॅथिक मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटल बेळगावी आमच्याकडे अनुभवी डॉक्टर्सची टीम सुसज्ज ओपीडी सेवा आधुनिक निदान सुविधा औषध वितरण सेवा आणि रुग्ण केंद्रित उपचार उपलब्ध आहेत अलर्जी त्वचारोग सांधेदुखी मायग्रेन श्वसनाचे आजार पोटाचे विकार महिला व बालरोग जीवनशैलीशी संबंधित समस्या आणि दीर्घकालीन आजारांवर होमिओपॅथिक उपचार उपलब्ध अधिक माहितीसाठी संपर्क करा केली होमिओपॅथिक मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटल एअरपोर्ट रोड बसवंत कुर्ची फोन नंबर 9448141503 आणि 8123871607 निरोगी आयुष्यासाठी आजच भेट द्या.

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं वेणुध्वनि 90.4 FM KLE कनसु भाषा संगम। लेकर आई हूं मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे स्वरा। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम स्क्वाड्रन लीडर जय सिम्हा के साथ बात कर रहे थे और उनकी जर्नी कैसी रही, उन्होंने कैसे अलग अलग क्षेत्रों में काम किया हुआ है, इसकी जानकारी ले रहे थे। आई एम श्योर आज के एपिसोड के लिए आप बहुत ज्यादा उत्सुक है, तो ज्यादा वक्त न गवाते हुए शुरू करते हैं आज का शो।
1: सर, वेणुध्वनि के स्टूडियो में आपका बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
1: आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि काफी अभी ये जो 35-45 एज ग्रुप के लोग हैं, वो भी अभी से कुछ बातें ऐसी है जो भूलते आ रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलना चाहूँगी कि हमारे फ़ोन बुक में, यानी कि फ़ोन में हमने किसी का नंबर सेव किया है, कई दिनों के बाद में अगर हम वो सर्च करने जाते हैं तो वो किस नाम से सेव किया है वो भी हमें याद नहीं रहता।
2: तो
1: ये काफ़ी मैंने सुना है कई बार कि ऐसे हो जाता है कि किस नंबर से वो किस नाम से सेव किया है उनका नंबर, वो याद नहीं आता। तो पहले तो ये जानना चाहूँगी कि ऐसे होता क्यों?
2: बिकॉज ब्रेन का एक फॉर्मूला मैडम, यूज इट और लूज इट। ओके, आप यूज करते रहेंगे तो ब्रेन का अंदर सेल्स रहेगा, नहीं तो नहीं, जेल चले जाएगा। अभी लुक एट माय हेयर, अभी मैं अपना बाल कट करूंगा तो अगेन दे विल ग्रो। इफ आई कट माय नेल्स, अगेन दे विल ग्रो। मेरा स्किन निकलेगा, फिर दोबारा स्किन आ जाएगा। ब्रेन के अंदर जो सेल्स है ना, एक बार मर जाएंगे तो दोबारा पैदा नहीं होगा। आपको आप सबको जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, जो है उनको वी हैव टू प्रोटेक्ट देम। हाउ वी नीड टू प्रोटेक्ट देम, हमको हमेशा कुछ ना कुछ स्किल सीखना पड़ता रहता है, किताब पढ़ना रहता है, कुछ ना कुछ जानना। नो, वी शुड कीप ऑन लर्निंग समथिंग न्यू, वी हैव टू कीप ऑन यूजिंग आवर ब्रेन। सो मोस्ट पीपल, स्पेशली द वुमेन और पीपल जो बिजनेस में सेटल होता है ना, तो जो कल किया सो आज किया सो फिर अगेन दोबारा, मतलब नए चीज कुछ हम लोग नहीं सीख रहे हैं। और घर से ऑफिस अगर सेम रास्ता आते हैं, सेम काम करते हैं, तो इसलिए क्या होता है, वो सेल्स जो है ना सोचता है कि मेरी जरूरत नहीं है, तो दे स्टार्ट डिटेरियोरेटिंग। जैसे कि आपका अपने घर में किचन में एक चाकू है, नाइफ है, हम यूज नहीं करेंगे 6 महीना, ब्लंट हो जाएगा, तो उसको यूज करने से विल बी बेटर नो। तो मैं ये बोलता हूँ कि हमेशा ना जिंदगी में कुछ एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, कुछ नई चीज सीखता रहना चाहिए, एंड यू शुड कीप यूजिंग दैट, देन दे विल हैव गुड मेमोरी। अभी WHO का रिपोर्ट है कि पूरा दुनिया में, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा दुनिया में 40 साल से ज्यादा जिसका उम्र है, 80% ऑफ देम ये अल्जाइमर डिमेंशिया का शिकार है। मतलब जैसे कि वाजपेयी जी का 5 साल बिफोर उनका देहांत से पहले उनका याददाश्त बिल्कुल चला गया। उनको नहीं मालूम था कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे, उनको नहीं मालूम था उनको भारत ने दिया था, वो था मगर नहीं था। रोनाल्ड रीगन द फार्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट, पिछले 2 साल बिफोर उनका डेथ ना, अपने बीवी नैन्सी रीगन को ही कुड नॉट इवन आइडेंटिफाई। और सब लोग ऐसा है, कुछ लोग अपने घर का एड्रेस बोलते हैं क्योंकि वी आर नॉट यूजिंग। एक तो स्ट्रेस है, और स्ट्रेस से ओवरकम करने का नंबर वन। नंबर टू क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कीप नो लर्निंग समथिंग न्यू। कुछ योगा करो, कुछ एक्सरसाइज करो, पहले बॉडी फिट रखो और ऑटोमेटिकली ब्रेन फिट रहेगा। और कभी कभी सुडोकू पजल सॉल्व करो, क्विज क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करो, किताब पढ़ो, कुछ नया स्किल सीखो, बड़े लोगों से बात करो। जैसे कि हमारे जो श्रोता हैं जो अभी प्रोग्राम सुन रहे हैं, वो काम में बिजी है, फिर भी कुछ जानने की जो चाहत है ना, दिस वन क्वालिटी हमारा 90.4 FM का जो भी श्रोता है ना, दे आर ऑलरेडी डूइंग दिस वर्क, तो वी आर इन द राइट पाथ। ओके, कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, नहीं तो बोलेगा मैं गाना सुन रहा हूँ, ये जयसिम्हा कौन है, ये मनीषा मैम कौन है, ये मेमोरी क्या चीज है, हमको जरूरत ना चाहिए, तो कुछ जा सकता है ना, स्विच ऑफ कर देते। मगर कुछ मैं सीखना चाहता हूँ, कुछ जानना चाहता हूँ, ये जो चाहत है ना मैडम, दैट इज एनफ फॉर यू। सो एज लॉन्ग एज वी हैव गॉट, ऐसा हमारा जो ऑडियंस है, हमारा जो प्रोग्राम सुनने वाला वेणुध्वनि का, एंड दैट काइंड ऑफ पीपल आर द राइट पाथ टू हैव गुड मेमोरी टिल वी आर अलाइव।
1: ओके, यानी कि हमें हमेशा नया कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, हमारी मेमोरी को थोड़ा काम देते रहना चाहिए।
2: यस, ब्रेन को यूज करना,
1: तभी ये एक्टिवेट रहेगी हमेशा, और हम जो भूलने की मतलब बीमारी हमें लगी रहती है उससे थोड़ा बाहर निकल सकते हैं।
2: एब्सोल्युटली राइट मैम,
1: करेक्ट। यानी कि बहुत अच्छी टिप्स आपने दे दी। फिर यहाँ पे एक सवाल उठता है सर कि ठीक है, वर्किंग वुमन्स फिर भी बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, या फिर काफी अलग अलग फील्ड में वो काम करते हैं, तो नई नई बातें उनके सामने आते हैं, तो नया कुछ जानते हैं या फिर वो होते रहता है रूटीन में। बट जो घर पे रहते हैं वुमन्स, जो उनका रूटीन का वर्क सिर्फ करते हैं, यानी कि खाना पकाना, बच्चों को रेडी करके भेजना एंड ऑल, वो जो करते हैं उनके लिए हम क्या बता सकते?
2: मेनी पीपल वुमेन ये सोचता है कि बस ओके शादी हो गया, दो बच्चे पैदा हो गया, अभी घर में खाना बना दिया, बर्तन साफ कर दिया, कपड़ा धो लिया और वो दो तीन टीवी प्रोग्राम देख लिया, फिर बच्चे आ गए, फिर उनके लिए खाना बना दिया, हस्बैंड आएगा उनको देखभाल कर दिया। इसका मतलब क्या है मैडम? सी, खाना पीना सोना ये जिंदगी नहीं, जिंदगी मतलब भगवान के एक देन है, एक गिफ्ट है। सी, व्हाट यू आर इज गॉड गिफ्ट टू यू, व्हाट यू बिकम इज योर रिटर्न गिफ्ट टू गॉड। भगवान ने इतना कुछ टैलेंट दिया ओके, तो उसको यूज करना चाहिए। एवरी वुमेन हैज गॉट सम पोटेंशियल मैडम। ऐसा कि कुछ लोग हैं ओके नो ओनली अपना कर्नाटक का, महाराष्ट्र का कुछ खाना बनाते हैं मैडम, और ये खाना बना के सेंड करते हैं कुरियर में टू अमेरिकन बच्चा, और वहाँ से उनको ऑनलाइन में पैसा मिलता है। कुछ लोग ना गुजरात में पापड़, लिज्जत पापड़ बना के 2,000 करोड़ का कंपनी बना दिया, और आप टेलरिंग कर सकते हो, गाना सिखा सकते हो बच्चों को, डांस सिखा सकते हो, आप कुछ लिख सकते हो ओके, और ऑनलाइन में कुछ सिखा सकते हो, नहीं तो 2-3 घंटा नाउ यू कैन मेक यूज ऑफ योर टाइम प्रोडक्टिवली। जब बच्चा चला गया स्कूल, हस्बैंड चला गया ऑफिस, नो टिल 4 बजे तक मैं अपना टाइम कैसे यूज करूं ओके, कुछ ट्यूशन कर सकता हूं क्या, कुछ टेलरिंग काम कर सकता हूं क्या, कुछ अपने हस्बैंड को मदद कर सकता हूं क्या। इफ यू थिंक नो, इतना कुछ अपॉर्चुनिटी हो जाएगा लाइफ में, कुछ एक्साइटमेंट होगा, एंड देन यू विल हैव यू नो लॉट ऑफ वर्क टू डू, यू विल बी एबल टू अर्न सम मनी एंड यू विल बिकम अ रोल मॉडल टू योर चिल्ड्रन एज वेल। तो तब क्या होगा, ब्रेन विल बिकम वेरी एक्टिव, कुछ ना कुछ ओके कुछ पढ़ते रहना चाहिए, समथिंग दैट यू कीप रीडिंग राइट। सो देयर बाय व्हाट विल हैपन इज योर ब्रेन आल्सो विल बिकम एक्टिव, और जब ब्रेन एक्टिव होगा बॉडी आल्सो विल बिकम वेरी एक्टिव ओके। सो दिस आई वांट टू शेयर टू ऑल द वुमेन, अभी अपना जो अपना प्रोग्राम सुन रहे हैं ना उनको करना पड़ेगा खुद का, आई वांट टू डू सम वर्क ओके। एवरीवन हैज गॉट सम टैलेंट ओके। एक बार आंख बंद करके सोचो, बचपन से पैदा होने से आज तक ना कौन सा काम करने से ओके आपको अच्छा लगता है? कब आपका स्कूल का टीचर होगा, मम्मी होगा, दादाजी होगा, आपका मामा जी होगा, कोई ना कोई बोला होगा ना बिटिया नो आपका इसमें बहुत अच्छे करते हो, अच्छा पेंटिंग करते हो, अच्छा गा लेते हो, अच्छा एम्ब्रॉयडरी करते हो, अच्छा स्टिचिंग, कुछ ना कुछ तो होगा ना। उसको बाहर निकाल के उसमें आगे बढ़ने का, और उसमें क्या होता है, ब्रेन बिकम्स वेरी एक्टिव। एक तो पैसा मिलेगा, दूसरा यू बिकम रोल मॉडल, तीसरा ब्रेन एक्टिव भी रहेगा, जिंदगी का एक मकसद भी फिलअप हो जाएगा मैडम।
1: बहुत ही बढ़िया बात कही सर आपने, और काफी सारे वुमन जो हमारा शो अभी सुन रहे होंगे उनके लिए तो बहुत घर बैठे बैठे एक अच्छी टिप्स उनको मिली जो अपनी लाइफ में यूज कर सके और थोड़ा सा अपनी लाइफ जो अभी है वो जी सके अच्छी खुशी से। तो सर अभी मेन सवाल ये है कि बच्चे जो है, स्टूडेंट्स जो है, वो अपना लर्निंग स्किल रहे या फिर मेमोरी स्किल रहे वो अच्छी तरह से डेवलप करने के लिए हम जाते जाते हमारे लिसनर को क्या टिप्स देंगे?
2: सी, पहले तो ब्रेन का एक ही लैंग्वेज है, वो जानता है, कन्नड़ नहीं जानता, मराठी नहीं जानता, हिंदी नहीं जानता, इंग्लिश बिल्कुल नहीं जानता। ब्रेन का भाषा है पिक्चर का भाषा, जैसे घर में टीवी है ना वैसा हर इंसान का ब्रेन में एक टीवी है। यदि हमने बोला डायनासोर, क्या आया आपके दिमाग में? डायनासोर का पिक्चर, नॉट द स्पेलिंग। यदि हमने बोला ताजमहल, आपने क्या देगा? ताजमहल का पोर्ट्रेट, नॉट द स्पेलिंग। यदि हमने बोला माँ, क्या आया? माँ का तस्वीर, नॉट द स्पेलिंग। इसलिए बच्चे बोलते हैं कि जब मैं मूवी देखता हूँ ना बहुत अच्छा लगता है, कांतारा मूवी ओके देखा था 1.5 ईयर पहले ओके, KGF Chapter 1 अभी भी बच्चा स्टोरी बोल सकता है, मगर कल जो पढ़ा है ना ही डजंट रिमेम्बर। वाई? नाउ मूवी के अंदर पिक्चर्स है, टेक्स्ट बुक में पिक्चर नहीं है। तो ब्रेन को पिक्चर पसंद है, ब्रेन को ओनली पिक्चर जानता है। तो अभी क्या है, छोटा बच्चा होगा, अप टू 5th क्लास ना हमने कुछ रामायण सिखाया, महाभारत सिखाया, कोई भी हिस्टोरिकल स्टोरी कॉमिक्स में सिखाते, ज्यादा पिक्चर्स लेस वर्ड्स, बच्चे दे वर एबल टू लर्न। जब हाई स्कूल में आते हैं पिक्चर्स कम होता जाता है, एंड देन वर्ड्स विल इंक्रीज, एंड ब्रेन को नहीं पता चलता कि हाउ टू कन्वर्ट द वर्ड्स इनटू पिक्चर्स। हम लोग ये सिखाते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट द वर्ड्स इनटू पिक्चर्स ओके। मतलब जैसे कि कोई एक स्टोरी का माफी, एक मूवी का माफी, नो कैन यू सी द होल थिंग, जैसे कि गांधी जी ने किया दंडी मार्च ओके। नाउ इफ यू कैन सी द होल प्रोसेस एज अ मूवी फॉर्म नो दे कैन रिमेंबर, सिंस एवरीथिंग इज नॉट अवेलेबल इन द मूवी नो। हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, जो भी अभी इंडिया पॉपुलेशन प्रॉब्लम होगा, डेमोक्रेसी होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ब्रेन ड्रेन होगा, लाइक अमेरिकन नो इलेक्शंस दैट आर गोइंग टू हैपन इन द मंथ ऑफ नवंबर डिसंबर समरे में कुछ भी होगा ना, वो क्वेश्चन होगा ना, उसको हाउ टू कन्वर्ट देम टू पिक्चर्स, ये हम लोग बच्चों को सिखा देंगे ना, इट बिकम्स इजी। हम लोग इसके लिए 5 दिन वर्कशॉप करते हैं, सो हर दिन 2 to 2.5 hours वर्कशॉप, उनको फ्रॉम बिगनिंग टू एंड आई टीच देम, एंड बाय एंड ऑफ 5 days दे लर्न सो मेनी मेमोरी मेथड्स, ओके, विच हमारा स्कूल में हम लोग सीख नहीं रहे, तो ये बच्चे सीख पाएंगे, तो दे कैन कन्वर्ट इन टेक्स्ट बुक इन टू पिक्चर्स, तब बच्चों को ना पढ़ो बोलने की जरूरत नहीं पड़ता, बिकॉज हम लोग कभी बच्चों को टीवी देखो नहीं बोलते, वो बैठ के देखते रहते हैं ना, वैसा खुद अपना किताब खोल के

0: पढ़ने लगेगा बच्चे लोग. सो दे हैव नीड टू लर्न समथिंग कॉल्ड क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, मतलब इमेजिनेशन. सो ब्रेन भाषा को हमको समझना होगा. ओके, सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टीच चिल्ड्रन, हाउ टू कन्वर्ट द वर्ड्स इनटू पिक्चर्स. दैट्स अ बेसिक, ये बुनियाद है, ये फाउंडेशन है. ये सीखेंगे तो रेस्ट ऑल विल बिकम पार्ट ऑफ द थिंग.
1: ओके ओके सर, पर कुछ ऐसे टिप्स या फिर कुछ ऐसे ट्रिक्स जो अपने डेली रूटीन में हो, अपनी प्रैक्टिस में रखे और अपनी मेमोरी थोड़ी सी शार्प करे.
0: तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज नाउ ऑल द चिल्ड्रन, ना यदि मैं कुछ चार पांच वर्ड्स देता हूँ. ओके, हमने बोला प्लेट, बकेट, ओके, एंड देन हमने बोला पोटैटो, हमने बोला एक पेंसिल, हमने बोला बाइक, हमने बोला फिश. अभी मैं पांच छह वर्ड बोला, हमको बिल्कुल याद नहीं होता. अभी क्या करना पड़ेगा, उनको एक विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा. इसका मतलब आपका हाथ में एक प्लेट है, प्लेट के ऊपर आई एम पुटिंग वन पिंक कलर बकेट, बकेट के अंदर हम डाल रहे हैं कुछ आलू पोटैटो, और जब भर गया उसका ऊपर एक पेंसिल है, और उसके ऊपर एक बाइक खड़ी है, एंड वन फिश वो बाइक को चला रही है. सो द मोमेंट यू सी वन टू द अदर, ऑटोमेटिकली यू विल गेट वन टू द अदर कनेक्शन. ओके, दिस इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन मेथड. और दूसरा चेक थिंग है, कोई भी वर्ड को नो हमको कुछ याद करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल हम बोलूंगा बल्गेरिया, एक देश है, उनका कैपिटल है सोफिया. अभी बल्गेरिया तो हमने बोला ब्रेन के अंदर एक टीवी है, यू सी पिक्चर्स, कोई पिक्चर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा. सोफिया पिक्चर नहीं आ रहा. अब बच्चा क्या करेगा, बल्गेरिया सोफिया, बल्गेरिया सोफिया, बल्गेरिया सोफिया, और दो तीन चार पांच बार पढ़ेगा ना. अभी इसको क्या करते हम लोग, इसको बोलते हैं पुटिंग सेंस इनटू नॉनसेंस. बल्गेरिया नहीं जानते हम लोग, इसको तोड़ देते हम लोग. बल्गेरिया मतलब बुल गिर गया. कहां पे गिर गया, सोफिया माने सोफा के ऊपर गिर गया. सो बुल गिर गया सोफा में, ऐसा हम लोग पिक्चर दिखाते. तो करने से क्या होता है, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर देम टू रिमेंबर. जैसे कि आपका कोई साइंटिफिक वर्ड्स होगा, बोटेनिकल वर्ड्स होगा, जुअलॉजिकल वर्ड्स होगा. हमारे घर में एक मेडिकल किट है, एक टैबलेट इंजेक्शन से बॉटल का नाम होगा. ऐसा वेरी इजीली दे विल बी एबल टू रिमेंबर बाय कन्वर्टिंग देम इनटू पिक्चर्स. दिस इज फर्स्ट मेथड. उसके बाद जैसे कि एक टेक्निक बताता हूँ, जैसे कि निमोनिक मेथड है, जैसे कि सेवन कलर्स ऑफ द रेनबो. हम कैसे याद करते हैं, सो विप जी आर बोल के याद करते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येल्लो, ऑरेंज, रेड. तो हम लोग क्या करते हैं, हर एक वर्ड का एक फर्स्ट लेटर लेके एक वर्ड बना के हम लोग सीखते, याद करते. वैसा एक मेथड है. इसके अलावा हम आल्सो वी डू समथिंग कॉल्ड यू नो वन मैकेनिकल मेथड, जुडिशियस मेथड, ओके, एंड समथिंग कॉल्ड मेमोरी पैलेस मेथड हम सिखाते हैं उनको. ओके, जर्नी मेथड, लोसी मेथड. ऐसा नो पिछले 12 साल से हमने 24 मेथड्स डेवलप किया, एंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स नो वन आफ्टर द अदर. ओके, सो घर को सुंदर बनाने शुरुआत करते हैं बुनियाद से, देन वी पुट वॉल, देन उसके बाद हम लोग स्लैब डालते हैं, देन उसके बाद वुडन फिक्चर्स, उसके बाद ग्लास डालते हैं, उसके अंदर फ्लोरिंग करते हैं, उसके अंदर विंडोज फिक्स करते हैं, उसका किचन करते हैं. ऐसा सुंदर बनाते हैं ना, ऐसा नो एवरीथिंग हैज गॉट वन टेक्निक. ओके, डिफरेंट डिफरेंट वेज अब बच्चों को पूरा सीखना होगा, एंड इफ दे कैन लर्न इट बी गुड. ओके, सो वी आर अवेलेबल ऑन वेबसाइट में हम लोग है. ओके, और ऑनलाइन में कोई सीखना चाहते हैं जो हमारा श्रोता है, ओके, दे कैन लिसन लर्न फ्रॉम ऑनलाइन भी सीख सकते हो. और कोई भी टीचर है वो सीखेंगे तो शी कैन टीच टू नो हर चिल्ड्रन. और कोई स्कूल में ओके कोई ग्रुप ऑफ टीचर्स दे सीखेंगे तो इट बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ देम. ओके, सो वी आर इन दिस प्रोफेशन ऑफ टीचिंग मेमोरी, क्योंकि हम लोग ये सुने थे कि हेल्दी माइंड ओके इन हेल्दी बॉडी. सो माइंड को हेल्दी रखना है ऑलवेज. ओके, सो उसके लिए हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं.
1: बहुत अच्छा सर. तो ये भी मैं पूछना चाहूंगी कि ये तो हो गया स्कूल स्टूडेंट के लिए, कुछ टेक्निक्स आपने बताए जो प्रैक्टिस में अगर रखेंगे तो उनकी मेमोरी थोड़ी सी शार्प हो जाएगी. हालांकि ये एक कोर्स है, जो कोर्स पूरी तरह से अगर कंप्लीट हो जाए तो उनको बेनिफिट्स ज्यादा मिलेंगे. बट हमारे शो के माध्यम से आपने कुछ टेक्निक्स बता दिए हैं. उसी के साथ साथ जो घर बैठे लोग रहते हैं या फिर जो वर्किंग रहते हैं उनके लिए भी कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे?
0: यस सर्टनली. मेरी वुमेन दे कंप्लेन ना कि मुझे कभी चश्मा नहीं मिलता, चाबी नहीं मिलता, क्योंकि एक जगह में एक आइटम रखने की आदत नहीं और एक आइटम एक जगह में नहीं रखते. ओके, दैट्स अ बिग थिंग. द बेसिक थिंग इज कोई आदमी बाहर निकलता है, अंदर आता है, क्या लेके जाएगा? जेब में एक पेन होगा, एक मोबाइल फोन होगा, एक चश्मा होगा, एंड देन उनका जेब में एक पर्स होगा, एक कर्चीफ होगा, एंड देन बेसिकली व्हाट विल हैव. ओके, नाउ दिस 5-6 और गाड़ी का चाबी होगा. इसका मतलब जब घर आते हैं ना, चप्पल, जूता शू स्टैंड में. ओके, और आपका बाइक, कार का चाबी, अलमारी का चाबी, ऑफिस का चाबी वहां पे चाबी का स्टैंड में, और तीसरा मोबाइल जो है चार्जिंग पॉइंट में, हेलमेट है ना वो टी पाई के ऊपर,

0: आपका जो चश्मा और पर्स है टीवी के ऊपर, ओके, ऐसा रखने का 21 डेज हम आदत करेंगे, ओके, इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी. सो ये जो ऑल द मदर्स हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं ना, शी शुड बी द हेड ऑफ द फैमिली. तो हस्बैंड हो, बच्ची हो, बेटा हो, जो जब जब आएंगे ना उनका डिसिप्लिन, बेटा ये आइटम स्कूल बैग यहाँ पे क्यों है, वहाँ पे रखना था ना, आपका यूनिफॉर्म यहाँ पे क्यों, अलमारी में रखना चाहिए ना, हाँ जी आपका मोबाइल फोन यहाँ पे क्यों पड़े, वाई आर नॉट पुटिंग सी नो. एक जगह में एक आइटम रखने का आदत करने से रात को 12:30 बजे नींद में भी कोई पूछेगा पापा का पर्स, सबको मालूम होगा पापा का पर्स होगा, वो टेबल का ड्रायर में होगा, यू विल बी एबल टू गेट इट, नंबर वन. और नंबर टू, एक छोटे सा मेथड है, जैसे कि दूध रख के भूल जाते हैं मेनी पीपल, ओके, पूरा जल जाता है, कभी गीजर ऑन कर दिया वो भूल गया, फैन ऑन कर दिया भूल गया, और हस्बैंड चिल्लाता है कि इतना मेरा बिजली का बिल, थोड़ा 1 लीटर का दूध खराब कर दिया, औरत लोग पता नहीं चलता कि यार मैं घर संभालूं, बच्चों को संभालूं, ये दूध मैं भूल गया. तो क्या है प्रॉब्लम, क्या है मालूम है, जब हम लोग दूध रख रहे हैं ना, वी आर नॉट यूजिंग समथिंग का बायोलॉजिकल क्लॉक, मतलब हर इंसान का बॉडी में एक क्लॉक है, जैसे कि हम लोग अलार्म रखते हैं मोबाइल के अंदर, जैसे कि एवरी सेल विल वर्क एज ए क्लॉक. जैसे कि आपकी सहेली कोई बोली, मनीषा मैम आई एम गोइंग टू बेंगलोर एंड देन मेरा ट्रेन बेलगाम से जा रहा है 4 बजे सुबह, ट्रेन आएगी 10-15 मिनट रुकेगी, शायद मिल सकता हूँ क्या? आपका बोलते अरे क्यों नहीं मिलूंगी, मिल के बहुत दिन हो गए ना, 4 बजे मैं आऊंगे ना, काफी लेके हम लोग बात करेंगे. और आप अलार्म रखा 3 बजे उठने के लिए, रात को 2 बजे से 3-4 बार उठ कर देखती हो ना कि 3 बज गया कि नहीं बजा, क्योंकि आपने अपना ब्रेन को बॉडी को बोल के सो गई ना, और बॉडी आपको उठाती है बिफोर द अलार्म. ओके, ऐसा क्या करना पड़ेगा, जब आप दूध रख रहे हो ना, आपका दिमाग क्या, आप बच्चा बोला अरे बेटा आ रहा हूँ, इतना मैं सासू माँ, हाँ सासू माँ मैं आ रहा हूँ पानी लेके, और हस्बैंड बोलता है मेरे टावल दा, हाँ मैं आ रहा हूँ, वो सब्जी वाला, हाँ मैम साहब आपका सब्जी, ओके, 4-5 लोग ना उनको ऐसा पुकारा, उनको दिमाग नहीं चल रहा. जब उनको क्या करना पड़ेगा, जब दूध रख रहे ना, अभी आई एम कीपिंग मिल्क ऑन द स्टोव, अभी 5 मिनट बाद मुझे इसको ऑफ करने का, ये इन्फॉर्मेशन जो है ना अपने ब्रेन को बोलने का, ब्रेन का नो फ्रॉम देयर नो इट गोज टू एवरी सेल ऑफ अ बॉडी. यदि आप टीवी देख रहे हो, बगल वाला आंटी से बात कर रही हो, आप बाथरूम में हो ना, 4-4 मिनट के बाद ना कुछ तो लगेगा कि अजीब सा कुछ तो है यार बॉडी में, कुछ वो समथिंग इज देयर, क्या वो मुझे, ओ माय गॉड, वो दूध ऑफ करने का आपको पता चलेगा. सो वी नीड टू बी कॉन्शियस इन डूइंग सम वर्क. जब गीजर ऑन करें ना, अभी मैं गीजर ऑन कर रही हूँ, 7 मिनट के बाद इसको ऑफ करना चाहिए, और जब घर से निकल रहा हूँ मुझे फैन को ऑफ करना चाहिए. दैट इन्फॉर्मेशन गो गेट इन टू ब्रेन एंड देन दे विल बी एबल टू ओवरकम ऑल दिस स्मॉल प्रॉब्लम्स. कोई ऐसा नहीं बोला कि मेरे मेमोरी ठीक नहीं है, ओके. और दूसरा बात क्या है मालूम है, छोटी चीज भूल जाते हैं ना, सब लोग बोलने लगते हैं कि मेरी याददाश्त ठीक नहीं, मेमोरी ठीक नहीं, ऐसा बोल बोल के ना खुद अपन को लगता है कि यार मेमोरी ठीक नहीं. बोलना हमेशा आई गॉट गुड मेमोरी, आई एम द सुपर पर्सन, आई हैव वेरी गुड मेमोरी, मैं कैसे भूल जाऊंगी, नो कौन जैसे मैं, उससे अच्छा मेरी मेमोरी है. ऐसे बोलने से क्या होता है मालूम है, नाउ यूर ब्रेन विल लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशन. सो ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट दैट यू कैन रिमेंबर, ओके. और कभी कभी ना ऐसा कभी प्रोग्राम ऐसा मिलता है, कोई मेमोरी प्रोग्राम, आप छोटे हो बड़े हो, सीखने का कोई उम्र नहीं रहता, जिंदगी का आखिरी वक्त तक तो हम सीख सकते हैं, ओके. तो सीखने में कोई इंसर्ट नहीं होता, यू शुड कीप लर्निंग. कभी आपको मौका मिले कोई भी, नॉट ओनली जयसिमा और कोई और मिले, तो उनसे कुछ ना कुछ सीखना, 1-3% बेनिफिट होगा जिंदगी में, दैट्स वे टू गो फॉरवर्ड इन लाइफ. या
1: ओके सर, बहुत अच्छी बातें कही आपने, और हमारे जो ऑडियंस है जो हमें सुन रही है अभी, उनको भी बहुत यूजफुल होगी वो अपनी रूटीन में. और उसके साथ साथ मैं ये पूछना चाहूंगी कि बहुत सारे हैबिट्स ऐसे होते हैं जिसको हम चेंज करने की कोशिश करते हैं बट वो हमसे नहीं हो पाता है, तो उसके लिए हम क्या एडवाइस करेंगे कि फिर वो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हो या फिर यूथ जनरेशन हो या फिर वर्किंग वुमन्स हो या फिर वर्किंग कोई भी हो.
0: डॉक्टर से बोलते हैं मैडम, कोई भी अच्छी आदत अपनानी हो, कोई बुरी आदत छोड़ना हो, 21 डेज, ओके, आपको उससे लग के रहना पड़ेगा. सोचिए मैं सुबह सुबह ना मैं वॉकिंग मुझे जाने का, ये मेरा आदत, आई वांट अपना चाहता हूँ, आई वांट टू गेट दिस हैबिट. तो क्या करना पड़ेगा, हर दिन अलार्म रख के ना उठ के अपना सहेली के साथ एवरीडे यू गो फॉर वॉक. कितना दिन, 21 डेज. 22nd डे वेदर आपका सहेली आ रही है नहीं आ रही है, अलार्म बजे ऑटोमेटिकली यू विल ऑटोमेटिक गेट अप, मतलब 21 डेज. सोचो मैं स्मोकिंग करता हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए, तो 21 days. Don't even think about smoking. Don't even touch smoking. Don't even go near to them. 22nd day, आपको स्मोक करने की आपको चाहत भी नहीं लगेगा. मतलब 21 days, कुछ भी चीज ना लगा के कॉन्शियसली करना चाहिए. इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी. इसलिए आपने सोचा होगा जो लोग शबरीमाला जाते हैं, अयप्पा टेम्पल जाते हैं अपने कर्नाटक में, आंध्र में, तमिलनाडु में, ऑलमोस्ट 1 month तक ना वो ब्लैक कलर का लुंगी पहनते, ब्लैक कलर ड्रेस, वो चप्पल भी नहीं पहनते, वो जमीन पे सोते. क्यों? ऐसा डिसिप्लिन करने से रेस्ट 11 महीने भी उसी रास्ते में जाएंगे. ऐसा कि कोई इस्लाम में रमजान के पहले समर में 1 month तक ना वो लोग सुबह 5 बजे से लेके शाम तक ना एक बूंद का पानी भी नहीं पीते. इफ यू कैन कंट्रोल दैट ओके थिंग, रेस्ट ऑफ इट विल बिकम सो इजी. एंड सेम थिंग इन क्रिश्चियनिटी एज वेल. इसका मतलब हमारे बुजुर्ग लोग ना वो लोग साइंस नहीं बोले, बिकॉज बोलने से हम लोग ना ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना हम लोग, तो बोलते क्या साइंस है. इसलिए भगवान का नाम पे ना हमको अच्छी आदत सिखाए. ओके, सो वेदर विच एवर रिलीजन हो हमको अच्छी बात सिखाए ना, इवन एनी प्रैक्टिस, ओके राइट, इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस. सो यू मस्ट लर्न हर चीज का बिहाइंड इट, देयर इज अ साइंटिफिक रीजन. ओके, यू कैन फाइंड आउट दैट रीजन नो. ओके, इज सो ग्रेट, बिकॉज हिंदुस्तान में इतना इतना सालों से अभी भी वी आर वन, वी आर एबल टू लिव विथ सो मेनी धर्म, ओके, कैस्ट, कम्युनिटी, स्टेट्स, लैंग्वेजेस, बिकॉज ऑफ आवर फाउंडेशन क्या है, हमारा एक था, मतलब वी आर ऑल इंडियंस, हम लोग हिंदुस्तानी है, एक चीज जो है ना. और दिस इज कमिंग फ्रॉम अवर धर्म, वेदर विच एवर द रिलीजन दैट यू आर फ्रॉम. सो दे टॉट अस ओनली गुड थिंग्स, एंड इफ यू कैन पास दिस टू द नेक्स्ट जनरेशन, आई एम श्योर इंडिया कैन बी द नंबर वन कंट्री इन द होल वर्ल्ड इन द ईयर्स टू कम. और दैट शुड बी अवर फोकस, दैट शुड बी अवर मकसद, ओके, दैट शुड बी अवर गोल इन लाइफ.
1: ओके सर, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने हमारे शो में बता दी है, और आपने इतना समय हमें दिया इस शो में आने के लिए, उसके लिए थैंक यू सो मच.
0: थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और धन्यवाद 90.4 अपना वेंद ध्वनि श्रोताओं के लिए. थैंक यू सो मच. आई हैड कम टू बेलगांव एंड देन आई हैपेंड टू मीट मनीषा मैम एंड ऑल दिस स्टाफ ऑफ 90.4 FM. आप सुनते रहेगा, और मेरे जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे आपसे, और यू ट्राई टू पास ऑन दिस, एंड वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर. थैंक यू सो मच मैम.
1: थैंक यू सो मच.
2: तो ये था आज का भाषा संगम का कार्यक्रम. आई होप आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा. फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं. जाने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात, अपनी ऑनलाइन जिंदगी से थोड़ा सा ऑफलाइन वक्त निकालिए और अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कीजिए. बाय, टेक केयर, और सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनासू.

0: KLE Society's Dr. Prabhakar Kore Super Speciality Hospital. Cure for all health-related problems. Experienced doctors and ultra-modern facilities ke saath. KLE Society's Dr. Prabhakar Kore Super Speciality Hospital and Medical Research Center. Nehru Nagar, Belagavi. Call 08312473777.
1: हेलो एंड नमस्कार सभी सुनने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आप मुझे सुन रहे हैं KLE वेणुध्वनि 90.4 FM पर। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अगली बार जब आप खाना बना रहे हो और या खा रहे हो तो मुस्कुराहट के साथ में खाना बनाइए और खाइए। देखिए जीवन कितना खुश होगा ये आपको भी अंदाजा नहीं है। चलिए अभी मुस्कुराइए।

सो गुड इवनिंग, आप सुन रहे हैं KLEV 90.4 FM। बी रिलैक्स लेकर आई हूँ मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे स्वरा। आज हम बी रिलैक्स में बहुत मजे करने वाले हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातें जो ऐसी हैं जो एक्चुअली बेवकूफियां हैं पर हम रोज करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना उनको हम वेणु ध्वनि पे भी आपके साथ दोहराएं और आपको याद दिलाएं कि ये बेवकूफियां करना बंद कर दीजिए। छोटी छोटी बातें हैं, बिल्कुल मामूली सी पर बहुत फनी है, तो हंसने के लिए तैयार हो जाइए और तैयार हो जाइए क्योंकि अब मैं आज का शो शुरू कर रही हूं और कुछ प्यारे गाने सुनाऊंगी। सुनते रहिए KLEV 90.4 FM, बी रिलैक्स विद आरजे स्वरा।

0: कई बार ऐसा हुआ है कि आप ऑफिस के लिफ्ट के नीचे खड़े हुए होते हो, आपको लेट हो रहा होता है, आपको दिख रहा है कि वहाँ पे उस फ्लोर का बटन दबा हुआ होता है, फिर भी आप उसे बार बार तेजी से प्रेस करते हो। आप एक बार प्रेस करो या दो बार या दस, लिफ्ट तो तभी आएगी जब उसे आना होता है। तो क्यों ये बेवकूफी करते हो, आप अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो। शांति से वेट करो, लिफ्ट आ ही जाएगी।
1: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्म आके गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

रेड सिग्नल पे रुक के हमें पता है कि रेड सिग्नल है, आगे वाली गाड़ी हिलने वाली नहीं है जब तक वो सिग्नल ग्रीन नहीं हो जाता। फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत ही जल्दी होती है और वो बार बार हॉन्क करते रहते हैं, हॉर्न बजाते रहते हैं, और उनको देख के ऐसा मन होता है कि चिल्लाकर पूछे, भाई क्या उड़ के जाना है तेरे को, जाना अगर तुम्हारे गाड़ी में पंख है तो। और बहुत बार हम भी ऐसा करते हैं कि हमें भी जल्दी होती है, रेड सिग्नल देखते हुए भी हम भी हॉर्न बजाते हैं। तो ये बेवकूफी करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। सुनते रहिए KLEV वेणुध्वनि 90.4 FM, बी रिलैक्स पर, और फनी बातें लेकर मैं फिर से हाजिर होऊंगी।

जब लॉन्ग डिस्टेंस कॉल हो ना, तो आप चिल्ला चिल्ला के फोन पे क्यों बात करते हो? क्यों आपको ऐसा लगता है कि आप चिल्ला के बात करोगे तो सामने वाले को क्लियरली सुनाई देगा? सामने वाले को क्लियरली तभी सुनाई देगा जब आपका फोन का नेटवर्क सही होगा। डिस्टेंस का और क्लैरिटी का कोई लेना देना नहीं है। आमने सामने रूबरू जब किसी से बात करते हो, तब अगर आप जरा सा आवाज ऊपर नीचे करके बात करें ताकि इंसान सामने वाले को क्लियरली सुनाई दे, तो समझ में आता है फोन पे चिल्लाने का क्या मतलब है। इसीलिए लॉन्ग डिस्टेंस कॉल हो या शॉर्ट डिस्टेंस कॉल, अपना वॉल्यूम जरा सा कंट्रोल में रखिए। सुनते रहिए KL Venudhwani 90.4 FM। बी रिलैक्स विद RJ स्वरा।

जब नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम हो और आवाज क्लियर नहीं आ रही हो, डिस्टरबेंस हो रहा हो, आवाज कट रही हो, तो हम लाउडली ऊंची आवाज में बात करने लगते हैं। भाई नेटवर्क ही नहीं है तो आप ऊंची आवाज में बात करो या नीची आवाज में बात करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपना फोन डिस्कनेक्ट कर दो, नेटवर्क एरिया में आओ और फिर कॉल करो। क्यों अपना एनर्जी बर्बाद कर रहे हो और दूसरों को परेशान कर रहे हो? सिंपल सा लॉजिक है भाई, लगाओ। और ये ऐसी बातें है ना कि ये हम रोजाना करते हैं। मैं भी कई बार ऐसा करती हूँ, फिर अपने आप को डांट लगाती हूँ कि क्या कर रहे हो, नेटवर्क नहीं है, फोन डिस्कनेक्ट कर दो। एनीवेज आगे बढ़ते हैं शो में, कुछ प्यारे गाने आपको सुनाती हूँ। सुनते रहिए KLE वेणुध्वनि 90.4 FM।

एक बेवकूफी ना मैं रोजाना कर, जब मैं ऑफिस आती हूँ और अपना कंप्यूटर ऑन करती हूँ और मुझे कुछ काम करना हो जल्दी जल्दी में और कंप्यूटर ऑन होने में टाइम ले रहा हो, तो मैं उससे बातें करती हूँ, यार प्लीज जल्दी ऑन हो जाना, इतना क्यों टाइम लगा रहा है। जनरली जब मैं सुबह ऑफिस आती हूँ तब लाइव प्रोग्राम चल रहा होता है और मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम डिस्टर्बेंस हो लाइव प्रोग्राम में, इसलिए मुझे बहुत जल्दी होती है कि मेरा कंप्यूटर जल्दी से ऑन हो जाए। भाई आप कंप्यूटर या लैपटॉप या किसी और चीज से, गाड़ी से वगैरह बात करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो जितना समय लेगा उतना ही समय लेगा ऑन होने में और वो उसकी तेजी से ही काम करेगा। वो आपकी इंस्ट्रक्शन सिर्फ अगर उसे सही इनपुट दोगे तो ही मानेगा, आपकी वर्बल इंस्ट्रक्शन उसे समझ में नहीं आने वाली है। इसलिए ऐसी बेवकूफाना हरकतें करना बंद कर दीजिए, आप अपने आप को जोकर साबित कर रही हैं। सुनते रहिए KLEV 90.4 FM, बी रिलैक्स्ड विद आरजे स्वरा।

खड़गम चक्रगदेशु चाप परिदान शूलंबु शुंडी शिर शंखम संददतिं करैस्त्रिनयनं सर्वांग भूषावृताम्।

सालों सालों पहले किसी ने क्या कहा था, किसने क्या किया था, ये हमें बहुत अच्छे से याद होता है, स्पेशली द नेगेटिव थिंग्स। किसी ने अगर आपके साथ बुरा किया है, किसी ने आपका इंसल्ट किया है, या किसी ने आपका नुकसान किया है, किसी ने आपसे कुछ चुराया है, या किसी से आप जेलस फील कर रहे हो, वो बातें उस इंसान की बहुत सालों पहले वाली बातें भी आपको बिल्कुल क्लियरली याद होती है, जिससे आप ऐसे फटाक से बोल सकते हो। पर आपने आपका चश्मा कहाँ रखा है ये आप तुरंत भूल जाते हो। आपकी इम्पोर्टेंट कबर्ड्स की चाबियां कहाँ रखी है ये भी आप भूल जाते हो। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखे हैं ये आप भूल जाते हो। आपकी रोजाना की गाड़ी की घर की चाबी रख के आप भूल जाते हो। भाई ये कैसा लॉजिक है, मेरे को समझ में नहीं आया। जिन चीजों को एक्चुअली भूलना चाहिए वो हम नहीं भूलते, और जिनको याद रखना चाहिए उनको हम भूल जाते हैं। कितने फनी है ना हम। सुनते रहिए KLEV 90.4 FM। Be relaxed with RJ Swara।

अब एक मोस्ट फनी नहीं, मोस्ट इरिटेटिंग चीज जो आप जनरली करते हो, मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली मैं भी ये बहुत बार करती हूँ। कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन चल रहा है, कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा है और सामने वाला कोई बहुत सीरियस बात आपके साथ शेयर कर रहा है और उसके बीच में आप सुनते सुनते अचानक से ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ठीक करते हो। सच बताऊं ये बहुत इरिटेटिंग होता है और ये मेरे साथ भी बहुत हुआ है और मैं भी बहुतों के साथ करती हूँ और अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसा ना करूँ। पर प्लीज अगर आप भी ऐसा करते हैं तो मत करो, क्योंकि सामने वाला इंसान बहुत गुस्सा हो जाता है, बहुत इरिटेट हो जाता है। एनीवेज ऐसी बहुत सारी बेवकूफियों वाली चीजें हम रोजाना करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, पर कर भी लो तो बहुत बड़ा कोई इशू नहीं हो जाएगा। हाँ, वो सिर्फ स्मार्टफोन वाला याद रखना, वो रोजाना रात को पूरी रात स्मार्टफोन चार्ज मत करना, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाता है। इसके अलावा थोड़े रिलेशनशिप्स आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसीलिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना और इनको रिपीट मत करना, कोई नई बेवकूफिया करना, ताकि मैं नया शो बना पाऊँ। एनीवेज इसी के साथ मैं आज स्वरा आप सभी से विदा लेती हूँ। जाने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात, अपनी ऑनलाइन जिंदगी से थोड़ा सा ऑफलाइन रखने का लिए और कभी कभार अपने बिहेवियर को ध्यान से समझने की देखने की कोशिश कीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के भारत में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के भारत में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों के बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

मधुबनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है यादों के बारात। हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणुधुनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

मधुबनी 90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही, इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

दे रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

0: रे,
1: जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

जी की आवाज़ में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में, जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

पूरी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

करते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

तलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेनू थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

0: नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।
1: यादों की

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

90.4 KLE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।